सर्व कला भरपूर साथाई होए साहब चार साहेब दादे साहेब जीत सिंह जी साहेब दीदार सिंह जी साहेब जोरावर सिंह जी साहेब फतेह सिंह जी पंज प्यारे चाली मुक्तो सर्वात्र शहीदो मरीदो सत्यारे प्यारे साहब थाई होए सहाय जिना नाम जपया वन छकया तरम हेत सीस देते सिखी सदक निहारिया तना गुरमुखा गुरु दे प्यारे सिंह सिंघणिया दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बुलारे।

जी अमृतमय गुरबाणी की लड़ीवार कथा आरंभ हो रही है। लड़ीवार कथा श्रवण करो जी।

कहूँ देह दुखं कहूँ औखति रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या।

क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टाचार जितरंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरवी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव

नाग बानी कहूं गारडू गूड कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतम प्रवाह हो कहूं छल छाला धरे छद्र धारी कहूं राज साजंग

कहूँ करत जच गंधर्व गान, कहूँ धूप देव, कहूँ अर्घदान, कहूँ पितृ कर्म, कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच, कहूँ गान गीत, कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार, कई वचत एक पग निराधार, कई नेह देह, कई गेह वास, कई भ्रमत देश देश उदास, कई जन निवास, कई जगन ताप, कई जपत उर्द।

देह राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात वितंग जेह रचयं छत्री छत्र छितंग जेह राग न रेख न रोग मणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जेह तातन मातन भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जंपह किन्नर जाच जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास सितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी।

लो तब ताप करे नहीं न कृपा निध पान परे। जय फोकट धरम सफेद जह एक चित्त कृपा निध को जब है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है त्यो

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानिए।

आत्मात जात है न पात चेहन वर्ण है अदेक शेख फेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिए।

न मान है, न मौत है, न साख है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साहु को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न चल है, न छिद्र है, न चल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेग है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न चल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न दात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुरा

न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दर्द है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है।

तस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे वडे तपस तपी विसेखिए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिए अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है।

तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सबद पतार के तर जानिए जेह जोत शेष नाम सहंस वर्ण है नेत पूरण होत सोद सोद हटे सफय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त सके महाकप कड़त गाड़ अनंत हर हर कहियो सब।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूमा का जलेथले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय धके सब गुण चक्रत भेव मुख चार आद अंतना मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नहे पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दोष निकंदन आदि वृते चरासुर मारण पत दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रंभक पर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टि।

जा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखंड तमके अधसिद जमके फुंक फनंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंडया खंडन खून खिते दामनी दमंगण सुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर कण दुष्ट प्रकर खण दुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय होशी मै खासुर मर्दन भौम कास तलोर्ध दे दामनी प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी मै खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्टो बारण शोध मते फणि अर्भुंकारण बाघ बकारण सहस्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अर्ष प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण छिछुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ी वृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होशी मै खासुर मर्दन वरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु घमंगण शस्त्र झमंगण फणि अर्भुंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर्मन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन।

संकटे निवारण धम उधारण तेज प्रकर खंड धुंध तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आध रात गाद अच्छे सुधता समर्पण तर्क वितर्कण त्रपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो श्री सहस्र प्रकर खण आद नील गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नर्क निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हर लंगे आद अदंगे क्रूर कथे जय जय हो श्री रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी ब्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज

खतरियान खतंगी अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिडलाज विहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रतिपाल पति दो।

वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दोष वर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सी मैं खास और मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल।

चचरासुर मारण नरक निवारण पद दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दो धारे मुंड मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन विडाल बजे सरदार विवरखंड दुर्जन धरखण अतुल अमरखंड धर्म धुजे धूमराज विधुंसन श्रोणत चुन

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम कियो आव करते बसार जद भोदन भय आनंद तो कहो जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अदवय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जय नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए ब्रह्म एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जह जात पात नहीं भेद भरम जह रंग रूप नहीं एक धर्म जह शत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेक कहे नाम दास जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेक कहे नाम दास है कौन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र।

आनंद जिहे नेत नेत निस दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पच्छ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार फोखत है जल मैथल मैफल मैगल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दुखन कौदल दुजन के बल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रोग रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न फेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर।

तो सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हू मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो दह को मन मै जह को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अत भेद निर्पाण सब पजहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध अभेक अत वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश विरयो कर भेष तपोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे मिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे। गोड़ गर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जो को साधे पौन साधना के तेग बांधे। अरब के अरबी अराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे। दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली। दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे। तिब्बते ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सु फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहि चिट्ठी की जिंघार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है।

0: एक तार्किक गल कर रहे हैं। इन्हें ये जो बार बार बोलता कुत्ता बोलिया कुत्ता बोलिया, हुण आपां भी प्यारियो पता नहीं किहदे सामने या किहदे बद पिछे किन्नियां गालां कढ दित्तियां, कुत्ता बिल्ला की बोलिया की प्यारियो, उहनूं मार देना चाहीदा। यह बस यह बहाना बाजी है। महाराज नूं डराउंदा कहिंदा कुत्ता बोलिया तां करके तुहानूं सजा दे रहा हां,
1: देव सजाए प्राण कर हाना,
0: ते इह तुहानूं सजा दे करके तुहाडे प्राणा तो मैं हानि कर दवांगा, प्राण खिच लवांगा।
1: गुरु भानियो जे नह तब कहे,
0: महाराज ने कहा पापी आ तैनूं कदे नहीं बोलिया,
1: कहियो जैसे कर चाहे,
0: बार बार कही जांदा कुत्ता बोलिया कोई गल नहीं, तू आप ही कहिंदा कुत्ता कुत्ता, ते बस तू ओही तां काम कर जदो पानी खोलन लगा प्यारियो दे विचों बबूले उठन लगे, जदो 100 डिग्री दे विच पानी आ जांदा वाष्पीभूत हो जांदा। ए पानी दा प्यारियो एक तत् है, इस तरह हरेक तत् हुंदे हन, इहनू 1400 डिग्री 1200 500 डिग्री, पानी जिहड़ा प्यारिया 100 डिग्री दा जदों ताप लग जावे बगूले बनदे हन ते नाल वाष्पीभूत हुंदा। जदों पानी वाष्पीभूत होना शुरू हो गया, यह पापी बेईमान कहिंदा सिपाहियां नूं कोई फड़ो गुरु अर्जुन देव नूं, हाथ पैर बन करके पानी दे विच सुट दियो।
1: तब सतगुरु उठ आपे गए,
0: महाराज ने कहा बेईमाना की तू इन्हां नूं तकलीफ देंदा, असीं खुद उठ के जावांगे।
1: तब नीर मह बैठत
0: चल करके सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज तत्ते इस पानी दे कणूचे दे विच जा करके बैठ गए हन।
1: आहा कर हीर सिख करा,
0: दूजे पासे प्यारे ओ गुरु के सिख जो बार दूर खड़े हो करके तक रहे, त्राही माम हो गए, हाहाकार मच गई।
1: पिराणा शक्त ना जरा,
0: इना दे विच प्यारिया भाई पिराणा जी उठ के खड़ गए हन।
1: चलियो के लिए उबारी,
0: इना दे मन विच आया मैं भज के जावा सतगुरु महाराज नूं बचा लवा।
1: दुष्ट चंदू दुरचारी,
0: ते आ दुष्ट जेड़ा पापी चंदू जो कष्ट दे रहा दुख दे रहा इनू मैं खत्म कर दवा।
1: सिपाही गह कर सोटा,
0: जदो प्यारियो भाई पिराणा उठ के भजन लग महाराज जी दे वल दौड़न लगा, ते एक सिपाही ने मोटा डंडा लै करके चंगी तरह प्यारियो मार के इन्हां दियां नासां भन दित्तियां, इन्हां दे गोडे भन दित्ते। सतगुरु महाराज ने वेख्या कहण लगे भाई पुराणा जी आ की करदे पए हो, उत्थे ही रुक जाओ।
1: पर दुष्ट जर खारे नीरा,
0: याद रखो आ दुष्ट जो काम कर रहा ना इहदी जड़ खारे पानी दे विच पै जावेगी। पानी ता पानी ही हुंदा है प्यारियो, याद रखो के जिस तरह आम अपनी बनस्पति जड़ी हुंदी ना प्यारियो, खारे पाने दी बनस्पति वखरी हुंदी है, मिठे पानी दी बनस्पति वखरी हुंदी है। मिठे पानी दी बनस्पति जड़ी है ते ओदे विच प्यारियो खारा पानी पा दियो, देखण नूं ता प्यारियो बारी तौर ते ए वी पानी ते ओ वी पानी, ए भी लिकवीड ते ओ भी लिकवीड, लेकिन तत बदल जांदे। जे मिठे पानी दी बनस्पति दे उते प्यारियो खारा पानी पा दियो, तुहानू लगेगा कि जी मैं चंगी सेवा कर रहा, सेवा नहीं प्यारियो तुसी जहर दे रहे हो, ओ बनस्पति सुक जांदी है। महाराज ने कहा कि एदियां जड़ा जड़ियां ना खारे पानी दे विच पै
1: रहियां,
0: हम तो तजे असी ता अपने प्राणा दा इंज ही त्याग कर देना।
1: सासना तुम क्यों,
0: महाराज जी ने सिखा नूं कहा के भाई तुसी क्यों ए सासना अपने उते चलदे हो,
1: दूर कर जोर पिराणा,
0: भाई पिराणा जी हाथ जोड़ के खड़ोते होए हन,
1: दिखावन हित वखाना,
0: ते कहिंदे सतगुरु महाराज आप जी आग्या दियो मैं अजमत करा मात शक्ति दिखावा।
1: प्रभु जी रहयो जाए नह मोते,
0: कहण लगा सतगुरु महाराज इन्ना कष्ट साडे वेखदियां आप जी दे उत्ते ए तशत्तां नूं ढा रहे हन, मैं किस तरह बर्दाश्त करा महाराज, आप जी आग्या दो मैं अपनी करा मात दिखावा।
1: रावण को ए तक दुख होते,
0: साडे सामने आप जी नूं इन्ना दुख इन्ने कष्ट पै रहे हन,
1: लोहपुर नगर विसाले
0: आप जी आग्या दियो महाराज, ए दिल्ली ते लाहौर ए दो जो

0: करके पिड़ा देंदे आं। इहदा मतलब सी कि मैं इन्हां दी सल्तनत नूं तबाह कर देवां, इन्हां दी राजधानी बर्बाद कर देवां, महाराज देरी नहीं लगेगी, इन्हां नूं मैं नाश कर देवां। क्यों सतगुरु महाराज साडे रहिंदिआं वेखदिआं इन्ना कष्ट दुख आप जी झल रहे हो, जे आप जी वचन नहीं करना सिर्फ अखां दा इशारा कर दिओ।
1: सतगुरु कहे किहते पाई,
0: सतगुरु पातशाह जी ने वचन की भाई पिराणा जी ए शक्तियां तानू कैथों प्राप्त हुईयां,
1: अब शक्त दिखाई।
0: तुसी बार बार कहिंदे महाराज मैं शक्ति दिखावां, ए शक्ति तानू कैथों प्रगट होई है।
1: गुरु कर सेवत मारी,
0: कहिंदे सतगुरु महाराज तुहाडी सेवा करके गुरु कर दी चाकरी सेवा करके शक्तियां मैनू प्राप्त
1: हुई,
0: कृपा दे नाल ए वड़ा सारा पराक्रम मैनू प्राप्त होया।
1: दुष्ट मूढ़ क्या
0: आ, चंदू पापी मूर्ख की है मेरे सामने,
1: तुरक नाम
0: जे सतगुरु महाराज आप जी दे आप जी आग्ञा दें दे ओ, तुरकाना दा नाम मैं इस हस्ती तो धरती तो मिटा दवा, क्योंकि जिन्हां दे राज दे विच प्यारियो बहुत वड्डा अन्याय हो जावे, इन्हां दे राज दे विच तुहाडे वर्गे महापुरख नूं सतगुरु महाराज जी नूं इन्ना कष्ट इन्ना दुख देखना पै रिहा ते आम जनता दा की हाल होवेगा। स्याणे कहिंदे ना कि वड्डे बंदियां दे नाल तुसीं इस तरां करदे हो, गरीब गुरबे छोटे दे नाल तुसीं पता नहीं की करोगे। कहन लगा भाई पिराणा महाराज आग्या दिती जावे,
1: कहियो जिन की कर सेवा।
0: पातशाह जी ने कहा भाई पिराणा जी जिन्हां दी सेवा करके,
1: शक्त तहरत अहम,
0: देखो तुहानू ए शक्तियां प्राप्त हुईयां ते बड़ा तुहानू गर्व आया ना ए शक्ति दा,
1: शक्त है कह नाही।
0: और तुसी विचार करो, तुसी कहंदे मेरी सेवा करके शक्तियां प्राप्त कीतियां, ते विचार करो कि मेरे अंदर शक्ति है के नहीं है।
1: जानत अपने मन
0: मानी, अपने मन दे विच किस तरह जानदे हो,
1: जे जानत तूशन कर रहो,
0: जे तुहानू लगदा के जी मैं ता कुछ भी नहीं हां, धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज शक्तियां दे समुंदर हन, तुहाडे कोल किणका है ते ओ पहाड़ हन शक्ति दे, फिर ए जे तेरे मन दे विच है ते फिर तू चुप करके भाई पिराणा बैठ जा,
1: बैठे पिखो नहीं कुछ कहो,
0: ते कुछ भी ना बोलना कर, ए जो पहना बरतना ना ए बरत के रहना है,
1: नहीं ता शूशो ही रह
0: जाए, नहीं ता तू पाई खाली रह जावेगा।
1: शक्त को पुन पछता
0: ते एक बारी आ शक्तियां जे प्राप्त हो जांदियां ना दैवी शक्तियां, ए जे प्यारियो किसे कर्म अवगुण करन करके ए खो जान ए दुबारा नहीं प्राप्त हुंदियां,
1: कारण करना
0: इस करके असी ता इंज ही अपना पहना बरतौना कारण करना है।
1: लखें एव आचरना,
0: तैनू भाई ए आचरण दा पता नहीं है,
1: परम सूरत तूशन हो,
0: तै तू इन्ना क्यों चूरदा, तू चुप हो जा भाई,
1: नीच ग्रीव कर ऊच ना जो,
0: हुण तू नीवी पा करके जे तैनू वेख्या नहीं जांदा ना तू अखा बंद कर ले, नीवी पा ले। स्याणे कहिंदे ना भाई जिथे बोलन हारी आ तिथे चंगी चुप, ते देख के जिनू आपां कहिंदे ना देख के अणडिठ कीता, कई बारी प्यारियो वेख करके अणडिठ करने पैंदे, महाराज ने कहा नहीं चरी जांदी, जे असी चीकां मारदे आ रौला पाउंदे आ तां गल वखरी है, असी ओहदे पाणे नू मिठा करके मान रहे आ, जे तैनू कोई कष्ट हो रहा अखां नू बंद कर ले, नीवी पा करके बैठ जा,
1: सतगुरु बैठे देख मझारी।

धरिया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। जन पिता लोक सुतबंता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रजक संबाहे, ठाकुर काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊड आवे सैको सा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया।

जउन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तुसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सतरण को फल मोह पद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने, जा बुध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम,

काशी नतन भव आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्र

रच दीनी, कहूँ फूल राजा होए बैठा, कहूँ सिमट भय शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे अस ध्वजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई।

त्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोय मन क्रम बचन विचार चौपई मन अग्न स प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लवलागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गए की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे

कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे।

साध संगत जी गुरु साहिब जी का लंगर तैयार है, प्रशादा छक के गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो जी।

0: माने सुख अमृत प्रभना
1: भगवान के मन विश्राम राव
0: प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभु के सिमरन दुख न से
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभु के सिमरन दुष्मन तरे
0: प्रभु सिमरत कज बिघन न लागे
1: प्रभु के सिमरन हम निज जागे
0: प्रभु के सिमरन भवन व्यापे
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग
1: सर्व निदान नानक कर रंग
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निज
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभु के सिमरन बिन से दूजा
0: प्रभु के सिमरन त्रिदिशनानी

0: सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन बैस जति दाते,
1: हर सिमरन नीचो कुन जाते,
0: हर सिमरन दारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सकल कारा।

0: की छाया सो रंग लावे,
1: ओ बिनसे ओ मन पछतावे,
0: जो दिसे सो चालन हारे,
1: लपट रहो ते अंधर धारे,
0: ताओ सो जो लावे
1: ताको आना आवे के,
0: मन हर के नाम की प्री सुखदाय,
1: कर

0: सात के संग मुख पूजल हो,
1: सात संग मन सकली को,
0: सात के संग मिटे अभिमान,
1: सात के संग रटे सुज्ञान,
0: सात के संग बुझे प्रभु नेरा,
1: सात संग सब हो निबेरा,
0: सात के संग पाए नाम रतन,
1: सात के संग एक ऊपर जतन,
0: सात की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नाने सात की शोभा ब्रह्मा समाने,
0: सात के संग अगोचर मिले,
1: सात के संग सदा पर फूले,
0: सात के संग आवे बस पंच,
1: सात संग रत्रस पुंजा,
0: सात संग होए सबकी
1: सात

0: संग सो धन पावे,
1: जिस जन ते सब को बरसावे,
0: संग धर्म राय करे से,
1: सात संग को बा सुर देवा,
0: ते संग पाप पलाए,
1: सात संग अमृत गुण गाए,
0: सात के संग सर्व दान गावे,
1: नानक सात के संग सफल जनम,
0: सात के संग नई कज गाए,
1: दसो बेटे तो निहाल,
0: ते संग कलूत कर थरे,
1: सात के संग मरे पर हरे,
0: ते संग या हुआ सुए,
1: सात संग विश्वा कर मेला,
0: इच्छे सोई फल पावे,
1: सात के संग बिरता जावे,
0: ब्रह्म साधरित बसे।

0: सच सच प्रभु
1: गुरु प्रसाद किने बखियाने
0: सच सच सच सब कीने
1: कोट मदे किने मिले चिन्ना
0: भला भला भला तेरा रूप
2: अति सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी।

तन के दुखन नरक में पाए, तन के दुखन सो भाते हीन, तन के दुखन दार भ्रष्ट होए, नानक सत्संग निंदक भी तरे, संतन के दुख

0: देखो तब सब किज मूल,
1: नानक सो सुकम सोई अस्तूल,
0: ना कि जन्मे ना किज मरे,
1: आपन चलित आप ही करे,
0: आवा जावा दृष्टन दृष्ट,
2: आज्ञाकारी धारी सब शिष्ट,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनेक जुगत रस पाप उताप,
0: अविनाशी नाहीं किज काम,
2: धारण धार हो ब्रह्मांड,
0: अलख पे हो पुरख परता।

0: अज अभिमान ले हो मन मोर,
1: राम नाम हृदय में तोर,
0: लाद खेप संत संग चाल,
1: अवर त्याग क्या जंजाल,
0: धन धन कहे सब कोई,
1: वो को जला धर का सोए,
0: यो वापार विरला वापार,
1: नानक ताके सकल हारे,
0: चरण साध के धोई धोए पियो,
1: अरब साध को अपना जियो,
0: साध की धूर करो इस नाम,
1: साधु पर जाए कुर्बान,
0: साध सेवा वट भागी पाई,
1: साध संग कीर्तन गाये,
0: अनेक बिगनते साधु राखे,
1: हर गुण गाए अमृत रचा के,
0: ओढ़ गई संत दर आया,
1: रसोग नानक दे पाया,
0: मृतक को जीवालन हार,
1: भूखे को देवता दान,
0: सरब निदान जाकी दृष्टि माहे,
1: गुरब लिखे का लड़ा पाए,
0: सब कुछ तिसका हो करने जो,
1: इस बिंदु सर हुआ न हो,
0: जप जन सदा सदा दिन रहने,
1: जप दे हो जी मरने करने,
0: कर कृपा जिसको नाम दिया,
1: नानक सोचा निर्मल दिया,
0: जाके मन गुर की प्रतीत,
1: निजन आवे हर प्रतीत,
0: भगत भगत सुनिए ते लो।

0: सरब निरंतर को सोए गए गंभीर गए सुजाना
1: ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बख्शन नानक के मन हन राव
1: पूरन सरना
0: जो कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जाका नेत्र
0: निष्का मंत्र जाने हो
1: रूप मंगल सज्जा
0: सरब तो सुनिए करता के
1: राज में राज जोग में जोग
0: तप में तभी सक्रस में पोगी
1: ध्याये भक्त सुख पाया
0: नानक तिस प्रके ने अंत न पाया
1: सकल
0: देवार है हो गाए
1: का जन्म क्या जाने
2: सकल
0: करो अपने सो
1: समत ज्ञान ध्यान जिंदे
0: गंदास नाम जा में से
1: गुण में जा का ब्रह्म
2: है मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच इसके स्थान
0: जैसा जमावे तैसा नाना ज्ञान
1: रूप नाना जाके रंग
0: नाना वे करे एक रंग
1: नाना विधि कीनो विस्तार
0: नाना विधि कीनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार
1: नाना चलित
0: नाना चलित करे किन माए
1: नाना विद करी मनत मनाए
0: अपने की मता पे पाए
1: सब तिसके ठाव
0: जब जब जीवे नाना कर नाव
1: धारे सगले जन
0: नाम के धारे खड़ ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण।

0: जिस अपने नाम लाए,
1: नानक चौथे पद में सो जन बताए,
0: रूप सज्जा का सतस्थान,
1: पूरक सत केवल प्रदान,
0: सज्जा की बाणी,
1: सत्पूरक समाज समाणी,
0: सत्कर्म जा की रचना,
1: मूल सत सत उत्पत,
0: सत्कर्ण निर्मल निर्मली,
1: जिसे बुझाए तिसे सब भले,
0: सतनाम प्रभु का सुखदाई,
1: विश्वास सतनान गुरुदेव पाए,
0: वचन साधूप दे,
1: सत्य जन जाके हृदय पर रहे,
0: सत्य नृत्य पूजे,
1: सत नीरत पूजे जे कोए,
0: आप सत किया,
1: आप सत किया सब सत, जिसकी सृष्टि करने हार, करते कि मिन्ना जाने किया,
0: विस्मन विस्म पे विस्मान,
1: जिन बुझिया की साया स्वाद,
0: के रंग राज जन रहे,
1: गुर के वचन पधारक लहे,
0: दुख काटन हार,
1: जाके संग

0: राखे औरन को
1: सर्व दुनिया का राखा सोए
0: आहे सोच कर रे
1: बाणी जब नानक प्रबल घटाणे
0: बारंबार बार प्रभु जपिए
1: पिया अमृत मन तंद्र पिए
0: रतन जिन गुरु मुख पाए
1: इसके चवर नाय दृष्टाया
0: नाम धन नामो रूप
1: नाम सुख नाम का संग
0: नाम रस योजन तृप्ताणे
1: मत नामे नाम समाने
0: उठत बैठत सोत
1: नाम कहो नानक जन के सत्काम
0: अपना प्रभु
1: सरब तो का दाता
0: सरन सरब सुख
1: पा।

0: गोर वचनी हर नाम उचरे
1: सिक्के बंधन काटे
0: गोर का सिख हाटे हाटे
1: सिक्का नाम तन दे
0: गोर का सिख बड़ पागी है
1: हलत पलत सवार
0: नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे
1: सेवक जो रहे।

0: कराता
1: ब्रह्मे जन जन्म है पार ब्रह्मे
0: एके आपने कछु परम
1: सियानत लय न जाई
0: नानक ऐसा पूर्ण भागे पाए
1: दर्शन पे खत पुनी
2: निर्मल
1: रेत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आकान
0: मन संतों का तम पतियाने
1: गुण अखियो जाका।

0: पैर सुख दाता ताकि कीमत देने न पाए
1: भगत बंधनित करे
0: तेरा कमाए है सिमरे
1: बलिहारी सदगुर
0: अपना नाम के प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
1: रस पावे जन को
0: उस पर पीवे अमर सो होए
1: ओ उस पुर का नाही कदे बिना
0: जाके मन पकड़े गुंता
1: साठ पहर हर का नाम ले
0: साचो पदे सेवक को दे
1: मोह माया के संग न ले
0: मन में राखे हर हर एक
1: का दीपक पर गास
0: नाना पर हम पहुंचते ना से
1: माहे ठांड वरता
0: अनंत या दुख नाटे पाए
1: मरण के मिटे अंधे
0: साधु के पूरन उपदेशे
1: चूका निर्भव होए पसे
0: त्याग मत के न से
1: इसका सारना तिन कृपा तारी
0: सात संग जप नाम
1: पाई चूके प्रम
0: गुरु नानक
1: सरगुन।

0: जब एकार कृष्ण निष्ठे तब तारी अपन सुन समान, जब इसका वरण चयन न जापन, जब आपन आप ब्रह्म आपन के लाभ वर्ती जा,
1: जब हो तब केवल धनी जब हर गम पान, जब निर्गुण तब सज सुभा।

0: विनाशी सुख अपनासन
1: सजन मरण को कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: रघुग्रम की त्रास होगी सोए
0: जब अभिगत गोचर प्रभ एका
2: चित्र गोपत के पूजत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर
1: रघुग्रम।

0: अपने जी की
1: साफ साच धारी सब साच
0: ओ पोता पन संग्राज
1: ताकि गत मत कही न जाए
0: दुख रोए तर सो जी पाए
1: इसका किया सब परवार
0: गुर प्रसाद ना रखियो जान
1: जाने तिस सदा सुख होए
0: आप मिलाए ले प्रभु सोए
1: तनवंत कलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त

0: लोक साधके
1: अमिगलाले रतना
0: कमावत हो तो
1: आपरे लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का
1: जाके मन लगा रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
2: सुनत करे प्रभु का जी
0: प्रकटे कृपाल महा कै माते
2: नानक उदरे तिनके।

0: भगत जना के मन
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: थिती गोड़ी मेला पंजवा सुनो एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल मैयल पूरे आ स्वामी से जनहा।

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जीओ साहिब कमाल सरबंस दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुरां दे पावन अते पवित्र सतयुगी तप अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे रात दे दीवाना विच सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सतगुरां दा पावन पवित्र शहीदी गुरपुरब जिस दे निमित समूह हजूरी सात संगत तत् खालसा पंथ सेवक जत्था अते गुरु की संगत वालों पिछले तीन दिनों तो सतगुरां दे पावन हजूरी विच इस समय ते गुरबाणी दे पाठ शब्द कीर्तन अते गुरमत विचारां चल रहियां हन। आओ आप संगतां दी असीस सदका सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन बारे विचार करिए। सब तो पहला सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे जीवन बारे कल ते परसों दो दिन आप जी ने सत्कारियो ज्ञानी जी उन्हां दे पासों सतगुरां दे जीवन बारे विचार सरवण कीती है। जिवें कल आप जी ने सरवण कीता सी किस तरह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने अपने जीवन दे विच जिहड़ा गुरु अर्जन देव पातशाह जी का समां सी ना महाराज ने एक बार सिखी का बुलंदी ते प्रचार किया है जिस का जिक्र भी गुरबाणी विच है। प्रगट भई सगले युग अंतर गुरु नानक की वडियाई। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी की शहादत के कारण जिहड़े ने विद्वाना ने लिखे ने जिस वेले सात संगत जी दुनियावी तौर पर जे कोई इंसान बहुत वड्डी तरक्की करे ना सब तो पहला उहदे आपने जिहड़े नेड़े दे ने ना ओ उहदे नाल वैर करदे ने। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे जीवन दे विच भावें कि गुरबाणी दे विच स्पष्ट शब्दां दे विच इह बचन आए ने कि हे गुरु अर्जन देव साहिब महाराज तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इथों तक महाराज सच्चे पातशाह जी ने कह दिता बाणी दे विच भट्ट साहिबाना ने कह दिता है कि महाराज तुहाडे विच अते परमात्मा दे विच रत्ती मात्र भी भेद नहीं है। बचपन दे विच जिस वेले आप जी का प्रकाश होया माता जी सत्कारयोग माता भानी जी सतसंगत जी माता भानी जी दे कुखों गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी का जिस वेले अवतार होया ना आप जी दे नाना सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज उन्होंने उस बालक दे वल देख के ये बचन कहा सी कि ये भारी पुरख जग में प्रगट है। कहते भारी पुरख संसार दे विच प्रगट हो गया है। गुरु अमरदास पातशाह जी दे बचन सन कि भारी पुरख जग में प्रगट है बाणी को बोहित बड़ वह है। बोहित कहते जहाज नूं जिहड़ा पुरख भाव जिहड़ा ये साहिबजादा साडी सपुत्री दे कुखों जिसने अवतार धारिया ये भारी पुरख होवेगा अते ये बाणी दा बोहित जहाज होवेगा। अज आपां देखदे जिस जहाज दा जिक्र गुरु अमरदास पातशाह जी ने पहला ही भविखत बचन कर दिते सी अज गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दी देण है जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू प्राप्त होए ने। सतसंगत जी अज दूरों दूरों संगत आउंदियां ने पावन अस्थाना दे दर्शन दिदारे करदे भी ने। दर्शन दिदारे करके गुरु साहिब जी नू जागती जोत जान के प्रतख सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच अरदास करदी है। ये जे वड्डी दात जे सब तो पहली दात जे किसी ने दिती है तो वह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने दिती है। क्योंकि जिस वेले गुरु अर्जन देव साहिब महाराज समा अपने चाली चलता गया बचपन दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी दे समकाल उन्हां दे समय विच 11 साल आप जी ने उन्हां दी गोद दा आनंद माणिया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਥਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਅਧਾਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜਿਨ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਠਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੰਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ।

ठेस के पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह हो सिर शाह

स्वाद पौण स्वाद पानी स्वाद अग्नि खेडे बिठाने विस्मात धरते स्वाद पानी स्वाद साथ लेके प्राणी विस्मात जोग स्वाद जोग स्वाद पुष्पात पो विस्मात स्वाद स्वाद साल

सतगुरु नवारिया की मिलेख सम संभालिया, जिनकर उपदेश ज्ञान दिया इंद्री जगत में हल्या, कसम छोड़ दूजे लगे डूबे से उन जारिया, सतगुरु बहता अगर लेकिन विचारिया कर कृपा।